राजो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना तो मुस्कुरा, क्या गम है जिसको छुपा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे। तुम इतना तो मुस्कुरा।